कबहुँ नृत्य करै बह भांत, कबहुँ सोए रहै दिन रात। कबहुँ महाक्रोध विकराल, कबहुँ सर्व की होत रवाल। कबहुँ होए बह बड़ राजा, कबहुँ भिखारी नीच का साजा। कबहुँ अपकीर्त मह आवै, कबहुँ भला भला कहावै। जो प्रव राखै तिव ही रहै, गुरप्रसाद नानक सच कहै। कबहुँ होए पंडित करे बखियान, कबहुँ मोन धारी लावै ध्यान। कबहुँ तट तीर्थ स्नान, कबहुँ सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कबहुँ कीट हस्त पतंग होए जिया, अनिक जोन परमै परमिया। नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, जो प्रभावै तिवै नचावै। जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा वरन कोए। कबहुँ साध संगत उपावै, उस स्थान ते बढ़ न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रति करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। श्लोक सुखी बसै मस्कीनी, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसकै अंतर राज अभिमान। सो नरक पाती होवत सुआन, जो जाने मैं जो बनवंत। सो होवत बिष्टा काजंत, आपस को कर्मवंत कहावै। जन्म मरै बहु जोन परमावै, धन भूमिका जो पर करै गुमान। सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसकै हृदय गरीबी बसावै। नानकी हां मुक्ता कै सुख पावै, धनवंता होए कर गरबावै। तृण समान का संग न जावै, बहु लस्कर मानक ऊपर करे आस। पल पीतर ताका होए विनाश, सबते आप जने बलवंत। खिनमै होए जाए पसमंद, किसै न बदै आप अहंकारी। धर्म राय तिस करे खुआरी, गुरप्रसाद जाका मिटै अभिमान। सो जन नानक दरगै प्रवान, कूट कर्म करै हों तारे। शर्म पावै सगले बिरथारे, अनिक तपस्या करे अहंकार। नरक सुर्ग फिर फिरे अवतार, अनिक जतन करे आत्म नहीं द्रवै। हर दरगै को कैसे गवै, आपस को जो भला कहावै। तिसे भलाई निकट न आवै, सर्व की रेन जा का मन होए। कहु नानकता की निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए। तब इसको सुख ना ही कोए, जब ए जाने मैं किश करता। तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारै को बैरी मीत। तब लग ने चलना ही चीत, जब लग मोह मगन संग बाए। तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै। गुर प्रसाद नानक हो छूटै, सहस खटे लख को उठतावै। तृप्त ना आवै माया पाछै पावै, अनिक भोग बिख्या के करै न तृप्तावै। खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै। सुपन मनोरथ ब्रिथे सब काजै, नाम रंग सर्व सुख होए। बट भागी किसै प्राप्त होए, करन करावने आपे आप। सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार। इसके हाथ कहा विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए। आपे आप प्रभ सोए, जो किशकीनो सो प्रभ कह। जो किशकीनो सो अपने रंग, सबते दूर सब हूँ कह संग। बूझे दिखे करे विवेक, आपे अनेक। मरे न बिन सह आवे न जाए, नानक सद ही रहे असमाए। आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब कह साथ। आप कीनो अपन विस्थार, सब कश उसका उह करने हार। उसते पिन कहो किश होए, थान थन अंतर एक कैसोए। अपने चलित आप करने हार, कौत करे रंग अपार। मन में आप माने अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरप्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अति सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी श्रवण बख्यानी। पवित्र

जब कारी कशन दृष्टिता पापन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर कुसु कसै व्यापत, जब अपन आप आपार ब्रह्म तब हूँ कांक सोपत, पर मैं अपन खेलिया भरतीजा नान कर निहार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनि ता बंध मुक्त का कसो गि, जब एक कह रकम पार तब नरक सुर का कौन तार। जब निर्गुण प्रभ सह सुब तब शिव शक्त का कित था, जब आप आप अपनी ज्योत रह तब कवन डर कवन कत डर, अपन जल ताप करने हर नानक ठाकुर गम पार। अविनाशी सुख अपने आसन दे जन्म मरण को का विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास को किस होए, जब अवगत को चिर प्रभ एका तब चित्र को किस पूछ लेका। जब नाथ निरगोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपना आप आप ही चर्चा नानक पूर्व पाप ही पर जा। जय निर्मल पुरख प्रखात होता तय बिन मैल का ज्ञात होता, जय निरंजन निरंका निर्मा तय कौन कौन मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश जय छल क्षेत्र लगत गौ की संग। जय जो स्वरूप जो संग समाव तय कसे पूख गवन त्रिपताव कर्ण करावन करने हार, नान करते करना समार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाए तब कवन माए बाप मित्र सत पाए, जय सर्व कला आपे पर वीन तय वेदक देव कहाँ को चीन। जब अपन आप उतारे तो शगन अप शगन गा बेचारे, जय अपन ऊंच अपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है जेरा। बेसमन बेसमर बेसवाद नानक अपने गत जानो आप, जय अच्छा लशे भेद समाय उहां के से व्याप्त माया आप सुखा पिया देश ते गुण का नाही परवेश, जय एक एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लग जिंता। जय अपन आप दियार तय कौन कथे कौन सुनने हारा, बाबिया तू उठते उचा नानक आप सुखा पे पहुचा। जय आप रज प्रपंच करते गुण मैं किनु विस्तार, पापुन तय पई कहावत को नरक को स्वर्ग बन छावत, आल जाल माय जंजाल हमें मोह पर व्यापार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान, अपन खेलिया कर देखिया खेल संगोचे तो नानक के आए, जय अवगत भगत आप जय पसरे पासर संत प्रताप। दो पाका पे तनी उनकी शोभा उनुह बनिया पे, कौत कर अंध चोज आपे रस पोकन निर्जोग, जिस बावत स्यापन नाय ला जिस बावत सगेर खिलावे।

पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसनित त्यागो तुरंग संत जना की तुर मन मांग हा छोड़ बेनती करो सा संग अग्न सागर तुरो हर धन के पर लेह भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भर परमानंद नरक निवारो तारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवा नारायण एक रूप जागे रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम श्लोक साध गए वचन अमली गलाल ए रतन सुनंद कमावत हो तो उदार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग लागे मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहद बाजे सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे प्रगट गोपाल महाद गए माथे नानक उतरे तिन कै साथे सन जोग सुन सरनी आय कर कृपा बिरे आप मिलाए मिट गए बैर पे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सब प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण हुए सेव की सेवा आज जंजाल बेकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद है प्रभु तारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभु की उस करो संत मीतन सावधान एकाग्र जीता सोगमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बस है सोहोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रकट सब लोए सब ते उज पाए स्थान बाहर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक से प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सौके मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् कवित समदासी एक दृष्टिता हे फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक ना

सुखरूप साध संगत जियो। सतगुरु जी दी अपार बख्शिशा सदका रहमत सदका सानू सतगुरु जी ने यह पावन अमोलक घड़ियां बख्शिश कीतियां कि सतगुरु जी के पावन चरणों में बैठ करके सतगुरु जी की पावन बाणी पढ़ रहे हाँ, सुन रहे हाँ। सतगुरु जी कृपा करन इस तरह सानू अपने चरणों के नाल जोड़ के रखन। मालक सतगुरु जी अगे अरदासां बेनतियां करनियां हन। सतगुरु जी आप जी ने बख्शिशा करके सानू इस दुनिया के उत्ते सुआसां दी पूंजी दे के भेजिया है। सतगुरु जी जितने सुआस जाने अणजाने आप जी के हुक्म विच लै चुके सो वाह वाह कृपा करियो। जितने सुआस अजे बाकी हन मालक जी अपने चरणों के नाल जोड़ के इन्हों सफले करवा लैण, क्योंकि मालक के हाथ विच सब कुछ है। बाणी पढ़नी, गाउणी, बैठना सतगुरु जी के हजूर दे विच यह मालक के हुक्म अंदर है। सतगुरु जी कहिंदे हन आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। जो मालक दया करता है तो बैठ सकते हैं, जो मालक कृपा करता है तो सुन सकते हैं, नहीं तो एक लफ्ज़ भी सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, गा नहीं सकते। ये उदी कृपा है, उदी दया है, ताई ये सारी कायनात जो है वो चल रही है। मालक सतगुरु जी ने बड़ी अपार बख्शिश की, कोटान कोट शुकराना सतगुरु धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जिन्होंने इस पाकड़ियाँ सू बख्शिश की कि असी आप जी दे चरण पर सके हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु घर की जो प्रबंधक कमेटी है उन्होंने सारिया वीर का, सत्कारयोग सरदार महंगा सिंह जी उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस समा सू बख्शिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरद्वारा साहब के मैनेजर जो प्रबंध संभालते हैं सत्कारयोग ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी, ते जेडे दो जथे सतगुरु जी ने इस गुरु घर के बख्शिशा करके कीर्तन की सेवा वास्ते जिन्हां नूं तैनात किया है उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये गुरु घर के अमोलक हीरे हैं जिहड़े सानू कीर्तन सुनाउंदे हन, जिहड़े सानू कीर्तन दे नाल जोड़दे हन। भलो भलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गा। सतगुरु जी कृपा करन सभना नू चढ़दी कला गुरसिखी जीवन नाम दी दात सिखी सिदक भरोसा बख्शिश करन। आओ आनंद साहब दा पाठ सारे जाने मिल करके उपरंत सतगुरु जी दे हजूर अरदासां बेनतियां विच शामिल होवांगे जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे, आओ आनंद साहब का पाठ सारे जने मिल करके।

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुभ्राता, किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तुजा भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई, अड़िल सुनै गुंग जो याहे सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार, चौ पई को कहै, चौ पई संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस फुन तीन कहिजै, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा।

अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे अधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित राखे उर तारो, तम संसार।

उपजयो सगले दुख पलायन राव। जो मांगह सोई सोई पावह सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहु ते छूटै है भव जल जगत तरायण। खोजत खोजत तत बिचारे दा

ऐसा भ्रो मिले आसुदाता बिछड़न कति ही जासा है। गुण निधान किसी की मन पाई कट कट पूर रहो सब ठाई। नानक शरण दीन दुख भंजना हो रेण तेरे जूदा साहे मारू सोलहे महला पंजो।

गुरु गोपाल गुरु गोविंद गुरु दयाल सदा वक सिंधाओ गुरु सासत सिमृत खड़कर्मा गुरु पवित्र यसथाना ही गुरु सिमृत सब किल बखनास ही गुरु सिमृत जब संगन फास ही गुरु सिमृत मन निर्मल होवै गुरु काटी अपमाना ही गुरु का सेवक नरक ना जाई गुरु का सेवक पार ब्रह्म ते आई गुरु का सेवक साध संग पाई गुरु करदा नित जी दाना ही गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए सतगुरु फीट जर जसम गुफणिए कल कली।

मोह मल विवश कियो, काम गए केस पछाड़ियो, क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो, जन्म काल कर जोड़ हुकम जोय होए सो मने, पवसागर बंदियो सिक तारे सो प्रसन्न, सिर आत पत सचो तखत जोग भोग सुंजत बल, गुरु रामदास सच सलपन तू अटल राज अपग दल, सिर आत पत सचो तखत जोग भोग सुंजत बल, गुरु रामदास सच सलपन तू अटल राज अपग दल।

0: नमो रोग रोगे नमस्तंसनाने
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्र
0: नमो इष्टि इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
0: अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा मृतकर्ता
0: अदो ऊर्ध्वार्तं अंगंग हर्ता
1: परं परम परमेश्वरं पोषपालं
0: सदा सर्वदा से दाता दयालं
1: अचेदी अपेदी नामंग काम
0: समस्तो पराग

0: दान हरि फुल जी मेरे जाय यकीने
1: कल तरंग है अपेद है अपंग है
0: अजी जो निवास है गनी मुख्य राज है
1: जो स्वरूप है दुर्मुक्त भूत है
0: प्रभुगत प्रभा है संयुक्त सुधा है
1: गम स्वरूप है अपेद अनूप है
0: समस्त पराज है सदा संसार है
1: समस्त सलाम है सदैव लकाम है
0: निर्वाह स्वरूप है गाद है अनूप है
1: नाद रूप है नाद स्वरूप है
0: अनंतीय नाम है त्रिभंगी त्रिकाम है
1: वर्गन तर्बादे अगंजे अगादे
0: सुबन सर्पागे सुसर्पानुरागे
1: स्वरूप है चिज है अचूत है
0: नरकं प्रणास है प्रचुर प्रवास है
1: प्रभा है सदैव सदा है।

एक है अकर्म है कर्म है अनाज है जुगाद है अजय है बे है पूत है तूत है अनाश है उदास है दंत है बंध है भक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है चिंत है सुनिंद है लिख है दिख है एक है अपेक है अटा है अगा है असम है अगा

0: से गरीबुल निवास है,
1: हरिपुर सिकंदर असल ठिकान है,
0: कलंकन पन्ना से समस्तुल निवास
1: है, अकंजुल गरीब है रजाए करीम है,
0: समस्तुल जुबा है कि साहेब की राह है,
1: नरकन पन्ना से समस्तुल निवास है,
0: ये सरपुल गवन है हमें सुल रवन है,
1: तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है,
0: परम परम ईस है समस्तुल अदीस है,
1: अजे सुल अलेख है हमें सुल अपेख है,
0: जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है,
1: करीमुल कमाल है कजुर रजमाल है,
0: अचलन प्रकाश है कि अमितो सुभाष है,
1: के अजब स्वरूप है कि हम तो कबूत है,
0: अमितो पसा है कि आत्म प्रभा
1: है, अचलन अनंग है कि हम तो अपंग है,
0: मधुपार छंत्र प्रसाद मुनमन पर नाम गुन गन मुदा,
1: हर भर हर गंज हर नर प्रपंज,
0: अन गन पर नाम मुनमन सलाम,
1: हर नर अखंड बर नर अमंड,
0: अन पाव अनास मुनमन प्रकाश,
1: गुन गन पर नाम जल थल मुदाम,
0: अन छिच अंग आसन अपंग,
1: उपमा पारगत में तुदार,
0: जल थल अमंड दिस विश अपांड,
1: जल थल महंत दिस विश बयंत,
0: अन पाव अनास्ते तर तुरा,
1: आजान बाहु एके सुदाहु,
0: ओंकार आद कथनी अनाद,
1: खल खंड ख्याल गुर बर अकाल,
0: कर कर पर नाम चित चरण नाद,
1: अचित गाता जिच न बात,
0: अजज गात अन रंज पात,
1: अन टुन पंडार अन डठ पार,
0: आडीट तरम अत डीट कर,
1: अन वर्ण अंत दाता महंत,
0: हर बोल मना चंत्र प्रसाद,

0: करुणा कर है बिसंबर है,
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है कल खंडस है,
1: करते पर है करुणा कर है,
0: अजपा जप है तपा थप है,
1: अर्था कृत है अमृता अमृत है,
0: अमृता अमृत है करुणा कृत है,
1: अर्था कृत है तरनी तृत है,
0: अमितेश्वर है परमेश्वर।

0: एक अचरी छंद अजय अलय अबे अबे
1: अबू अजू अनास कास
0: अगंज अपंज अलख अपाख
1: अकाल दयाल लेख पेख
0: अनाम अकाम अगा

0: नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे
1: अजंजुला नामे समस्तुल निवासे
0: निकामन पेपूते समस्तुल स्वरूपे
1: कर्मं परनासि सुधर्मं प्रभूते
0: सदा सच्चिदानंद सत्

0: सब लोग छपेंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जोन त्रिलोक को राज करेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम

0: बास की बखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बिठायो
1: साच को सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो
0: काहू ले पाहन पूंज तरियो सिर काहू ले लिंग गड़े लटकायो
1: काहू लिखियो हर आची दिशा में

0: सबे रंग को आज सुन करिए।
1: पूर्ण होए हमारी आशा तौर भजन की रहे प्यासा।
0: और जो वे चास तुम ते पाओ।
1: सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सत्र हमारे मारिये।
0: आते मुझे बरिये, मन काल का त्रास निवरिये।
1: जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्त जो करियो रच्छा। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता।
0: काल पाए
1: कर विषन प्रकाशा, सकल काल का

0: दुखन को सब गुण सुख दियो सतरंग को पलमो बद कियो
1: काट के अंतर की जानत पले बेरे के पीर पछानत
0: चिंटी ते कुंचर सुला सब पर के पाटिस्ट कर फुला
1: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
0: एक एक की पीर पछाने कट कट के पड़ पड़ की जाने
1: कर कर कर ताला पजा तब तब दे अपारा
0: जब आ कर कर तो कहूं तुम मैं मिलत दे दर सब हूं
1: जेते बदन से सतारे आप अपनी बूझ चारे
0: तुम सभी ते रहत निरालम जानत भेद भेद आलम
1: निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नीद नाद सम
0: ताका मूल उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा
1: जानत
0: महादेव को कहत सदा से निरंकार का चिंत न तुमरा लखा न जाए पसारा के बे सजा प्रथम संसारा अंडे जेर से तजकिनी उत्पज खान बहु रच दीनी सगरी से स्तिकाय अचंभव आज जुगा स्वरूप संभव दुष्ट जते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रखाता पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे
1: ताके कारण कटने ये है
0: रच्चा होए ताए सब काला दुष्टर इस तरह तत्काला
1: जाए न हरे और ताके ताप तनक में हरे
0: रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट शाश सके न कोई।

0: कृपा किलविक कटे ज्ञान अंजन सारिया
1: अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे समारिया
0: कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया
1: बाबा जिस तू दे सोई जन पावे
0: पावे ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया
1: परम भूले फिरे दै दिस इक नाम लाग सवारिया
0: गुरु प्रसादी मन पिया निर्मल जिना पाना पावे
1: कहे नानक जिस दे पारे सोई जन पावे
0: आवो संत प्यारे हो कद की करे कहानी
1: करे कहानी कथ केरी कित द्वारे पाई है
0: तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाई है
1: हुक्म मनियो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी
0: कहे नानक सुनो संतो कथियो कथ कहानी
1: ए मन चंचला चतराई किने ना पाया
0: चतराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया
1: ए माया मोनी जिने परम भुलाया
0: माया तमोनी तिने कीती जिंठ गोली पाईया
1: गुरवान कीता तिसे मिट्टो जिन मोह मीठा लाया
0: कहे नानक मन चंचल चतराई किने

0: पाया।
1: कहे नानक तू सदा कर्म है तेरा अंत न पाया।
0: मुंजन अमृत खोज रे सो अमृत गुर ते पाया।
1: पाए अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया।
0: जन सब तो पाए एक वेख प्रसन्न आया।
1: लभ लोभ अहंकार चुका सदगुरु पला पाया।
0: अमृत
1: गुरते
0: पाया।

0: क्या जाना गुण तेरे,
1: जिस तू चला है तुम्हें चला जिना मार्ग पावे,
0: कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे,
1: जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे,
0: नानक सबद सोएला सतगुरु।

0: पावे मुक्त ना होर थे कोई पूछो विवेकियां जाए
1: परम आवे
0: मुक्त पाए लाग शरणी सतगुरु सब।

0: समाओ
1: समझती मन मिलया सचेलाया पाओ
0: आपे हीरा रत्न आपे जिसनु दे बुझाए
1: नानक सबद रतन है हीरा जित चढ़ाओ
0: सिर्फ सख्त आप उपाय के करता आपे हुकम बरताए
1: आप वेखे गुरमुख से।

0: ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवीं त्वा प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संत वार्गनि मन गारे भूखत है जल में थल में पल में कल के नहीं करम विचारे
1: दीन दयाल दयानि

0: कीट पतंग कुरंग भुजंग में भूत पवेक पवान बनाए
1: देव देव कपे हमें न प्रेम लग्यो ब्रह्म से ऊपर माए
0: वेद पुराण कतेब कुरान सेब तके कर हाथ न आए
1: उन प्रेम पर भाव बिना पद से उन

0: ब्रह्मा रुद्र पायक पाए दानव देव निंद पारा गंधर्व जाच रचे सुचारा
1: भूत भवेक भगवान गाने घट घट के पट पट की जाने।

0: ਪਾਈਆ। हे रब हे सस हे करुणा निध मेरी अबे बिनती सुन लीजै।
1: और न मांगत हम तुम देख चाहत हो चित मैं सोई कीजै।
0: शस्त्र सो अति ही रण पीतर चूच मरो तो सात पतीजै।
1: संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम है वर दीजै।
0: सवैया दे शिवा बर मोह एहे शुभ कर मन ते कबहू ना डरो।
1: ना डरो असो जब जाय लरो ने से कर अपनी जीत करो।
0: पर सिख हो अपने ही मन को एह लालच हो गुण तो उचरो। ਧਨ ਜਿਉ ਤਹ ਕੋ ਜਗ ਮੇ ਮੁਕਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੀਰ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸਿਉ ਦੀਪਕ ਜਿਉ।

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव मंत बसोदरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोधरा
2: गुरुदेव
0: तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा
2: गुरुदेव
0: आद जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा
3: गुरुदेव
0: संगत प्रभु।

आई। सर्वर हंस न जाने जाओ, काग को पंखी संग सागत सो ऐसी प्रीत है, बुझो ज्ञानी रंग। संत सवा जयकार कर, गुरमुख कर्म कमाओ, निर्मल नावण नानका गुरु तीर्थ दरियाओ। जन्मे का फल क्या गणी, जाहर भगत न पाओ। पैदा खादा बाद है, जा मन दूजा पाओ। भीखण सुनना झूठ है, मुख झूठा आलाओ। नानक नाम सलाहे, तू होर हम मैं आवो जाओ। ऐन बिरले नाही खणे, फैल फकड़ संसार। नानक लगी तुर मरै, जीवन नाही ताण। झूठे सेती जो लगी, मरै लगी सा पुरवाण। जिस

नानक करता करन हार कर विखे थाप थाप। मन में चूरे राम चंद्र सीता लक्ष्मण जोग हनुमंत आराध्या।

सालाहि सालाहणाओ फी सच्चा सालाहि नानक सच्चा अंगिकदारो भी भाव पर हर आहे नानक जह जय मैं फिराओ तय तय सच्चा सोए जह देखा तह अंगिक है गुरमुख प्रगट होए दुख विसारण शब्द है जी मन वसाए कोए गुरु की कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए नानक हौं हौं करते खप मुए खू होण लख असंख सतगुरु मिली सो उबरी सचै शब्द अलंख जिन्ना सतगुरी एक मन सेव्या तिन जन लागू पाए गुरु सब दी हर मन बसै माया की भुख जाए छी।

जो वाणी भगत सलाही देई अरना मैं जित लाई मन तानो थन आ गए राख आओ श्री विचा गुरे आ गए जाए पै भक्ति भक्त बलोच दे प्रलोचा पूर मिलाई हर प्रभि परवाहो है कित खाद पदाए सतगुरु कह पाण जो चलै तिपता सह हर गुण गाए धन धन।

माया मोहि जब फर में जाओ कर मुझसे खबर न होए। काम क्रोध मारो हिर ले आओ मन मुख अंदालोए। ज्ञान खड़ग पंच दूत संहारे गुरमत जागय सोए। नाम रतन पर गासे जाओ मन तन निर्मल होए। नाम हीन नगटी फिर ही फिर ना वह वह रोए। नानक जो तुर करतै लिखे जा सो मेट न सकै कोए। गुरमुख अर्तन खटिया गुर के सबल विचार। नाम पदार्थ पाए जाओ या तुट परि भंडार। हर गुरबाणी उच रहे अंतन पारावार। नानक सब कारण करता करे विखे सिरजनहार। गुरमुखी अंतर सहज है मन चढ़िया दस वै आकाश। तिथे ऊंग ना भुख है हरि अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चूलना सब गले आए पाए। एक उपजी एक विनस जाहे युख में आवे जाए। यमन वर्णन चुकई रंग लगा दूजे भाए। बंधन

भिख का मारण हर नाम है, गुरु गरुड़ सबद मुख पाए। जिनको पूर्व लेख आओ तिन सतगुरु मिल आया, मिल सतगुरु।

बिन हर सांत न जावई किस आ गए गरी पुकार मुड़ फागी सतगुरु पाए आओ बूझा ब्रह्म विचार किसने जा

कर्म मगुते पाई दूजै पर जे बगोई नानक सतगुरु नाव न पाई है जी सो लोचै कोई हर का नाव अत बड़ी ऊंचा ऊंची ही ऊंचा होई अपड़ को ना सकई जी सो लोचै कोई मुख संजम हच्छा ना हो भई कर भीख पवै सब कोई गुर की पौड़ी जाए चढ़ाए कर्म बरावत होई अंतर आए बसै गुरु शब्द विचार कोई नानक शब्द मरै मन मानिए साचे साची सोए माया।

मनमुख युर्वारण पार है यद विचर है लपटाए जो तुर लिखिया सुकुमा बनाओ करना कछु न जाए गुरुमति।

हर रखी सी उबरी सब दर हेल बिलाई नानक करता सब के सब जानदा जे रखी बणत बनाए। होम।

मन मुख अस्तरो नाथी आए मर बिन से जाए खेन वारो गुड़ भाग हो गए सदगुरु मिल हम तजे विकार हर नामा जब सुख पाए आओ जन नानक सबद विचारो मेरे सतगुरु भगत ना हो भई ना मन लगे प्यार जिन नानक नाम मेरा दे जाओ गुर कै ही ती प्यार गोभी का भी साहो ना की जय जी का पार बसाई अंत काल तिथे तू है जिथे हथ ना पाए मन मुख से

कमला रगड़े लुजय गुरमुख होए ते सबके सुजय नानक गुरमुख मनसो लुजय जिन्ना सतगुरु पुरख ना सेवे जाओ सब दन्ना की तो विचार हे मानस जून ना आखिया नो पशु ढोर गावार ऊना।

मन मुख दय दिशा फिर रहे तिथि से लोभ विकार माया मोहना चुकई मर जम हे बार बार सतगुरु शिव सुख पाए जाओ यत तिथि न रज विकार जन्म मरण का दुख गयाओ जन नानक शब्द विचार हर हर नाम ते आए मान हर दरगाह पावे मान किल विख पाप साओ कटिय हे हम मैं चुकै गुमान गुरमुख।

सच्ची राशि सत धन उत्तम परवी पाहे सच सुने हे सच मन लैना सच्ची कार कुमाहे सच्ची दरगाह वैसना सच्ची माए सुमाहे नानक बिना सतगुरु सतना पाईए मन को फूले जाहे।

भाभी हा सगली धरती जे पर है उड़ चढ़ी आकाश। सतगुरु मिले है जल पाई है चूकै भूख प्यास। जियो पिंड सब दिस गाओ सब किस दिस गए पास। बिन भूलिया सब किस जानदा किस आगै की चै अरदास। नानक घट घटी कु वरतदा शब्द करी परगास। नानक तिसे बसंत है जी सतगुर शिव सुमाई। हर बुट्टा मन तन सब पर फड़ै सब जग हरिया बल हुए।

पाखंड परम नाम जाय। अंतरों को शुद्ध माया मोहि भेदे जो हस्ती शार उड़ाए।

0: रचियो जानो चतुर सुजान।
1: जेह ते उपजो नानका दीन तहे मैं मान।
0: काट काट मैं हर जू बसे संतन कहियो पुकार।
1: कहो नानक ते भज मन।

राम कली मोहला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां बधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दो तां गावो हरि कीरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसार ना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवार ना। सबना गलां समरत स्वामी सो क्यों मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरै घर तां तेरै सब कुछ है जिस देह सो पावे। सदा सतसाला तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसै बाजी शब्द कनेरी। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो। साच नामे आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसियां जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुरबान किता गुर विटो जिस दियाँ बड़ियाइया। कह नानक सुनो संतो शब्द धुरो पियारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे। कह नानक तै सुखो वादित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी। संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अस हमारी जियो पिंड

एहन सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। धनासरी महला पंजवा घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बंदना हर बंदना गुण गाव हो गोपाल राय। बंदना हर बंदना गुण गाव हो गोपाल राय। रहाओ वड्डे भाग भेटे गुरुदेवा कोट प्राद मिटे हर सेवा।

सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपो हर रंगे पर तन दुख किछ पाप ना फेड़े जम जिंदार ना आवै नेड़े तृष्णा अग्न प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई तृष्णा अग्न प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला कुटान कुटान शुकराना है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जो सतगुरु जी समुचिया संगतां नूं अपने दर्शन द्वारे बख्शिश करके निहाल कर रहे हैं। सेवक परिवार बीबी प्रभजोत कौर जी समूह सेवक परिवार वालों सतगुरु ने बख्शियां दातां दा शुकराना करते हैं। परिवार के सुख शांति चढ़दी कला वास्ते अरदास बेनती करते हैं। सतगुरु ने चरण परसे सतगुरु कृपा करन समुचे परिवार को दरों करों गुरसिखी जीवन ते नाम बाणी दातां बख्शिश करन। कड़ा प्रसादी दे देख लैण उपरंत आप जी ने गुरु के लंगर छक के जाण दी कृपालता करनी जी। बुलाओ जी फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।